आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्ली तव समे गृहे निच देव्ये मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां।

धनम अग्निर्धनम वायुर्धनम सूर्योधनम वसु धनमिंद्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना वैनतेय सोमं पिब सोमं

0: अग पर अस का
1: मोडकच घर तुटकच छप्पर
0: मग अस ना
1: अव मोडकच घरन तुटकच छप्पर
0: मग राह की त्यात
1: अव पण रायाला

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे। श्रोते हो, भक्ति सुधाच्या इतर सर्व कार्यक्रमांची आणि उपक्रमांची माहिती घेण्यासाठी भक्तिसुधा.co.in या आमच्या वेबसाइटला अवश्य भेट द्या।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

0: अगपर अस का
1: मोडकच घर तुटकच छप्पर
0: मग अस ना
1: अव मोडकच घरन तुटकच छप्पर
0: मग राह की त्यात
1: अव पण राहायला

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।

सर्वारिष्टनाशकम् शाबरी कवचम् अथ ध्यानम्। ओम नमो भगवते श्री वीरभद्राय विरूपाक्षिलं निकुंभिनी षोडशी उपचारिणी वरुथिनी मांसचर्विणी चेम चेम चेम चामलारई धनम धनम कंप कंप आवेशय त्रिलोकवर्ती लोकदाई सहस्त्रकोटी देवानां आकर्षय आकर्षय नवकोटी गंधर्वान आकर्षय आकर्षय हंस हंस सोहम सोहम सर्वं रक्षमां रक्ष भूतेभ्यो रक्ष ग्रहेभ्यो रक्ष पिशाचेभ्यो रक्ष शाकिनिति रक्ष डाकिनिति रक्ष अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षारिष्टेभ्यो रक्ष रक्ष महाशक्ति रक्ष कवच शक्ति रक्ष रक्ष ओजंवाल गुरुवाल ओम प्रसह हनुमंत रक्ष। श्रीमन्नाथ गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धाढ्यं बटुकत्रयं पदयुगं द्युतिक्रमं मंडलं वैराटाष्टचतुष्टयं चनक्कं वैरावली पंचकं श्रीमन्मालिनी मंत्रराज सहितं वंदे गुरोर्मंडलम् इति प्रार्थना। या प्रार्थनेनंतर हात जोडून नमस्कार करावा। अथ प्रार्थना। ओम राम रेम रोम क्षाम क्षेम क्षुम कृष्ण क्षेत्रपालाय नमः। आगच्छ आगच्छ बलि सर्वग्रह शमनम मम कार्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं चक्रेश्वरी शंख चक्र गदा पद्मधारिणी मम वांछित सिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो कमलवदन मोहिनी सर्वजन वशकारिणी साक्षात सूक्ष्म स्वरूपिणी यन्मम वशगा ओम सूरा सूरा भवेयु स्वाहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरुणकिरणजालैरञ्जितासावकाशा विधृतजपमाला विटिकापुस्तकहस्ता इतर करकराड्या फुल्लकालार हस्ता निवसतुरुधिबाला नित्यकल्याणशीला। या प्रार्थनेनंतर हात जोडून नमस्कार करावा। अथ शाबरी कवच जपे विनियोगः। असे म्हणून संधेचे पळीभर पाणी तांबणात सोडावे। या कवचाचा विषम संख्येत आपल्या सामर्थ्यानुसार नित्य पाठ करावा। श्री अथ शाबरी कवच पाठ प्रारंभ। ओम सर्व विघ्ननाशाय सर्वारिष्ट निवारणाय सर्व सौख्य प्रदाय बालानां बुद्धि प्रदाय नाना प्रकारक धन वाहन भूमि प्रदाय मनोवांछित फल प्रदाय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। ओम गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम बलभद्राय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम शिवाय नमः। ओम जगन्नाथाय नमः। ओम बद्रीनारायणाय नमः। ओम दुर्गादेव्यै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम भौमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम गुरवे नमः। ओम भृगवे नमः। ओम शनैश्चराय नमः। ओम राहवे नमः। ओम पुच्छनायकाय नमः। ओम नवग्रह रक्षाम कुरु कुरु नमः। ओम मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु तेषु हृदयं त्वयि तोषमेति।

अन्यः कश्चित् मनोहरति नाथ भवानत एहि। ओम नमः श्रीमन बलभद्र जय विजय अपराजित भद्रम भद्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व विघ्न शांति।

धरणाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टम विनाशय विनाशय नाना प्रकार भोग प्रदाय मम। आपण जेव्हा दुसऱ्या करता म्हणतो त्यावेळेला त्याचे नाव उच्चारून यजमानस्य असं म्हणून पुढे म्हणावे। सर्वारिष्टम हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जयम कुरु कुरु व्यवहार लाभम वर्धय वर्धय रणे शत्रुम विनाशय विनाशय वीनापत्ययोगम निवारय निवारय संत्युतिप्तिम कुरु कुरु पूर्णम आयुः कुरु कुरु स्त्री प्राप्तिम कुरु कुरु हुम फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष युष्मदधिनम प्रत्यक्षम परोक्षम वा अजीर्णम पच पच विश्वमूर्ते अरिन हन हन एकाहिकम द्व्याहिकम त्र्याहिकम चातुर्थिकम ज्वरम नाशय नाशय चतुरधिकान वातान अष्टादश क्षय रोगान अष्टादश कुष्ठान हन हन सर्वदोषान भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय मम शत्रुं मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय विघ्नान हन हन दह दह पच पच मथ मथ विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय चक्रम गृहीत्वा शीघ्रमागच्छा गच्छ चक्रेण हन हन परविद्यां छेदय छेदय चतुर्शीति चेटकान विस्फोटय नाशय नाशय वातशूला बिहत दृष्टिन सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान आपरे बाह्यांतरादि विवंतरिक्षगान अन्यान पि कश्चित देश काल स्थान सर्वान हन हन विषम मेघनदी पर्वतादीन अष्टव्याधीन सर्वस्थानानि रात्रिदिन पथगचोरान वशमानय वशमानय सर्वोपद्रवान नाशय नाशय परसैन्यं विदारय विदारय परचक्रं निवारय निवारय

अक्षरो मंत्रः समुख्यायाम स्वाहातो वा। पुढील मंत्र हा 22 वेला उच्चारावा। हरहि ओम उच्चिष्ट देवे नमः डाकिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी ओम ऐं ह्रीं ठाट्ठ। द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम रक्षाम कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः। सर्व प्रकार बाधा शमनम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु। फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीं ठस्वाहा। शीघ्रम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु। देवी शाबरी क्रीं ठस्वाहा। शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णं आयुः कुरु। हेमवती मूल रक्षां कुरु। चामुंडाई देवे नमः। शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु। भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु। सती सरस्वती चंडिका देवी गलं विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु। महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा। सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु। क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुःखहरणं मंगलकरणं कार्यसिद्धिं कुरु कुरु। हरहि ओम श्री रामचंद्राय नमः। हरहि ओम भूर्भुवस्वः चंद्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनं कुरु स्वाहा। आयुरारोग्यम ऐश्वर्यम वित्तम ज्ञानम यशोबलम नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्त्र परिसंख्यया जपेत कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर् भवेत् तत्तः। अनेक विधिना भक्त्या कवच सिद्धिश्च जायते। शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः। सर्व व्याधि भयस्थाने मनसास्यतु चिंतनम् राजानुवशताम् यान्ति सर्व कामार्थ सिद्धये। अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियताम मम। शुभम भवतु। नवनाथ सिद्ध मंत्र। ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः। शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

भक्ति सुधा इंटरनेट रेडियो स्टेशन पर सुनिए ईश्वर भक्ति के अमीट स्वरों का हिंदी भक्ति संगीत कार्यक्रम भक्ति सुमन। भक्ति सुमन सुनिए हर दिन दोपहर 2:30 बजे। श्रोते हो, भक्ति सुधाच्या इतर सर्व कार्यक्रमांची आणि उपक्रमांची माहिती घेण्यासाठी भक्तिसुधा.co.in या आमच्या वेबसाईटला अवश्य भेट द्या।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, इसे संगीत से सवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और स्वर है पंडित राजन और साजन मिश्रा जी का।

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

आइए सुनते हैं हेमंत कुमार जी के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण जी का गीत। स्वर है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी।

श्रोताओं अब सुनिए संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीत से सवारा है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने और इसे गाया है लता मंगेशकर जी ने।